0: What would you like to taste today?
1: Every coffee, a new world. Every sip, a new taste. Keep exploring with Vertuo. Nespresso, what else?
2: आर्टिस्ट हूँ, ये मेरी जिंदगी और ऐसी रहेगी।
3: एक तुम ही आर्टिस्ट नहीं हो यार पूरी दुनिया में, कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता। यू नो व्हाट, इनफ ऑफ दिस।
4: कहाँ जा रही हो तुम?
3: नहीं रहना मुझे यहाँ पे, जा रही हूँ मैं।
4: हाँ तो जाओ, तुम्हारी रोक कर रहे तुम्हें, जाओ।